0: sheets, I guess, sheets.
1: Yeah,
0: that's a lined paper.
1: Yeah, lined paper.
0: Ah, yeah, there is a tourism. Yeah, I have to see it, really.
1: Javan, can you guys on Javan?
0: Tourism, yeah, I get it, but it's a lot. नहीं रंडो चला रहे हैं
1: नहीं होने का जरूर मैं देख के देखूं करूं
0: देख के देखूं करूं करो फलाना पार्ट लेना
2: नहीं नहीं बोल रहा तो प्रकाश ही था प्रकाश
1: यार नहीं
2: प्रकाश

0: पता नहीं बेटी, सॉरी मेरे दिमाग से उधर लेके चली गई ना बेटी। चलो 11, 6, 4.5 अपने।
1: हाँ जी 3-3 मेरा क्या है ना, 9 या 3-3 एज ग्रुप।
0: इफ यू वांट बेटी आई विल काउंट, जस्ट
1: फोन बना करो, फोन लिख दी बता मैं।
0: हाँ जी
1: फोन लिख दी है, जैसे फोर
0: वो आप हैं जी, 4.5
1: मैं कर दिया ना।
0: ओके स्टेक्स एंड 10।
1: हाँ जी
0: दोबारा करो। हाँ 11
1: 10 है बना।
0: अच्छा 10, 11 स्टेक्स 4, 6, 10 एंड 4.5
1: फोर डबल एंड हाफ कर दो।
0: हाँ जी 4.5 तो सिला तो बाद
1: हाफ के फिर 4.7
0: हाफ कर देंगे। हाँ जी मैं कर दी।
1: हाँ
0: जी मैं इतनी नहीं प्रॉब्लम जी, मैं रख लूँ इसको तक नहीं प्रॉब्लम। 3.5
1: इस तरह
0: 41 ਤੇ 28 ਰੋਂਗ ਕੀਤਾ
1: ਹਾਂਜੀ
0: 5, 15 ਫਿਰ 10 ਫਿਰ 11 ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ
1: 6, 10, 10
0: 4.5
1: 6 हो गया।

अगले साल यूज कर लेना ना पा। हाँ जी कह रहे थे छोटी ड्रामे तो लिखे है, मैं कैसे ना लिखे उन्होंने, मैं क्या देगा। हाँ जी तुझे बस खासा लिखे है।

0: सफल है जी को करे चित लाए। बेनती है हुण जब तक असीं जकारा नहीं छड्डांगे बच्चे उत्थे लगे नहीं जाने है ना, बच्चे पहले ही उत्थे चले गए ने ना, बच्चे लई जकारा छड्ड दो जिहड़े ने प्राइज लै लिया। बोले सोने हाल सो असी हुण नैक्सट बाकी दे अंडर नाइन दे बच्चे अनाउंस करांगे, सारे इकट्ठे इत्थे खड़े रहन, असी इकट्ठा जकारा छड्डांगे। हां
1: So the next five kids I will bring up is Kirat Kaur, age 6, 4508, Rahmat Kaur, age 6, 8849, Ikjap Kaur, age 6, 6865, Baltej Singh, age 6, 0561, Ekam Singh, age 6, 4987, Waheguru,
2: Waheguru,
1: Waheguru. Waheguru,
2: Waheguru,
1: Waheguru. So let's give a jakara for these kids. Bole so nehal. Waheguru,
2: Waheguru,
1: Waheguru. So now we'll have the last five kids for under 9 years. We have Jugjot Singh, 7 years, 8107.
3: Waheguru.
1: Gurfateh Singh, age 8, 1331. Pavit Singh, 8 years, 6471. Asis Kaur, 8 years, 3549. And Sukhmanpreet Singh, age 7.
3: Waheguru.
1: Waheguru.
2: Waheguru.
1: Waheguru.
2: Waheguru.
1: Waheguru,
2: Waheguru,
1: Waheguru,
2: Waheguru,
1: Waheguru,
2: Waheguru,
1: Sangji Jakara.

उस तो बाद दूजा रनर अप है बीबी हरलीन कौर। बीबी हरलीन कौर ट्रॉफी दी जावे जी, बोले सोने हाल। हूँ जलनित कौर और सुखम कौर चो विनर कौन है? दोस्त ऑफ यू हु थिंक सुखम कौर इज द विनर, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। एक गलत गल है यार, सपोर्ट करो बच्चे दी। सुखम कौर जो सोचता विनर है, हाथ रेज करो यार, इतना बच्चे वेरी बैड। ऐसा मतलब एक बच्चे के रिश्तेदार ज्यादा ने, गलत है। निस्दिन माया कारने, सारे नू हर एक बच्चे लिए हाथ रेज करना चाहिए है। वाई नॉट, ये सारे साढ़े बच्चे ने। सुखी बसा मोरो परिवार, ये अपना परिवार है। कौन कौन सोचता सुखम कौर जीती है? हैंड रेज करो। और जलनीत कौर ने भी हैंड रेज करता है, वेरी नाइस बच्चे। और जलनीत कौर जीते रहे, जिन्हों लगता है जलनीत कौर जीती है, हाथ रेज करो। Very good. See, the all Sangat, you have won, both of you have won already. So, without much ado, four princess, अच्छा जी, हाँ ठीक है, चार princess, चार साहिबजादियां, सारे बोलो वाहे गुरु, सारे बोलो वाहे गुरु, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी। Without much ado, today's winner of the material prize is Bibi Sukham Kaurji and the runner-up is Jalnit Kaurji. Let's give the trophies to them. No clapping. Bachyo, tusi jada na ghaniya wale show se jaande ho, gurdwaray kaatande ho, pata lag raha hai. Sare bolo wahi guru. Beda gharka vaya sada, sare bolo wahi guru. Dekh. Panth ki. पंथ की राज करेगा, राज करेगा, बोले सोनिहार। सो सुखम कौर गेट्स द आईफोन 17 नी विद द गिफ्ट रिसीट। यू कैन, आई गेस यू कैन गो एंड चेंज योर फोन इफ यू वांट। सारे बोलो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। पैंती तेरे को दो मेडल बच्चे ने ना, हाँ जी, दो बच्चों को होर मेडल देना 13 एंड अबव। बीबी रमनीक कौर जी एंड बीबी प्रवलीन कौर जी, जेडे 17 एंड अब तो एग्जाम दिता है। बीबी प्रवलीन कौर जी एंड बीबी रमनीक कौर जी, स्टेज से आ जाओ बच्चे। इन्हों भी ऑनर्स मैडल मिलता है, दे डिड वेरी वेल इन द एग्जाम। पर इन्होंने बेचारा कसूर नहीं, क्योंकि साडा एग्जाम इदा का कि 17 तो उपरले बच्चों के क्वेश्चन ज्यादा ने, असं इन्हों जितने नहीं देंगे बेचारा दे, अनलैस देर वेरी वेरी स्ट्रोंग। सो बच्चों ने वेरी गुड किया, लैट्स गिव अ जकारा। वे बच्चे ने अटेंड किया है, साढ़े टोरोंटो अराउंड 50 वे बच्चे करते हैं, दो आए हैं इतने शुरुआत है। लैट्स गिव अ जकारा फॉर द यूथ, बोले सोनिहार। देख पंथ की राज करेगा बोले सोनिहार।

0: नाम की है नाम
1: प्रमनिक
0: नु मिल गया अच्छा अच्छा पेंडी इट्स ओके प्रमनिक कौर नु मिल गया 9 to 12 दा फिर तुसी चेंज करा के अंडर 9 कराता इट्स फाइन पेंडी इट्स फाइन बिंदर पेंडी तुसी मिडिल ऑफ 9 to 12 अंडर 9 करवाता है इस करके इधर आ जाओ आ जाओ हां एक एक रन मैं 9 to 12 देता है आ जाओ सारे बोलो वाही गुरु सारे बोलो वाही गुरु सो नाउ वी हैव टू पीपल फ्रॉम 9 to 12 इयर्स टू कम ऑन स्टेज और एक रनर अप है और एक विनर है और बाद फिर बाकी साढ़े को काफ़ी बच्चे बाकी ने जिन्हों से मैडल्स देने ने सारे बोलो वाहिगुरु और सॉरी ट्रॉफीज देनिया ने ओके सो एवरीबडी इज गोन गेट समथिंग मोस्ट ऑफ यू हु डिड वेल द टॉप वंस सारे बोलो वाहिगुरु सो प्रमनीक कौर तुम वापस स्टेज से आ जाओ बेटा अपना लैके सो सब तो पहला प्रमनीक कौर को दिता लेट्स गिव अ जकारा फॉर हर शी इज अ रनर अप बोले सो निहाल खड़े जाओ बेटा नाम सो 9 टू 12 ग्रुप में तेरी फोटो आ जाएगी देख देख पंथ की राज करेगा राज करेगा बोले सोनिहाल नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज बीबी सिमर कौर जी फोन नंबर हैगा जी 1087 सिमर कौर 1087 12 ईयर्स ओल्ड कितने ने ये ऑलरेडी रनर अप अनाउंस कर चुके हैं सी भैन जी नाइट रन अच्छा कर देने आ जाओ बेटा सिमर कौर जी भी जकारा छोड़ो बोले सोनिहाल एंड नाउ आई वुड लाइक टू अनाउंस द ग्रैंड प्राइज विनर दिस गर्ल डिड वेरी वेल 89.3% मार्क्स बहुत सोना कीता है प्लीज कम ऑन स्टेज सरदार अविराज सिंह अविराज सिंह फोन नंबर 8107 बोले सोनिहाल देख देख देख देख पंथ की राज करेगा राज करेगा बोले सोनिहाल एंड अविराज सिंह मिल गया PS5 उन्हें PS5 ते करेंगे सहज पाठ सारे बोलो वाहे गुरु बिकॉज PS5 ते सब कुछ हो सकता है सारे बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु अब तो 10 साल पहले गुरुद्वारे फोन लेके आना अलाउड नहीं सी आज फोन ते असी मीनिंग देखते हैं थोड़े दिन रुक जाओ PS5 ते सहज पाठ होएगा सारे बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बोले सोनिहाल एंड नाउ वी हैव सम ऑनर्स ट्रॉफीज आई हैव गॉट 18 ऑनर्स ट्रॉफीज And we'll announce the names here now. Kitha shuru karna Malhar Singh? From 105, right? So I will announce 5 names at a time. Haan ji. Sare bolo Waheguru. तैनू पता है ये थर्ड रनर अप असी 9 to 12 क्यों नहीं दिता क्योंकि थर्ड रनर अप 4 बच्चे ने तो मैं 4 में एक ट्रॉफी नहीं दे सकता सारे बोलो वाहिगुरु सारे बोलो वाहिगुरु सारे बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु सो नाउ Malhar Singh from where? From here, right?
2: Devansh Singh.
0: So, apne kol 18 hage ne honors trophies, jo next 18 ranking bache ne percentage wise.
2: Utthe hi hage.
0: Tanji kinne ne total mainu ginne sikhe?
2: Utthe tusi pehlo utthe.
0: Tade kol kinne ne total dasso mainu sare bolo Waheguru. 8 itthe ne.
2: 18.
0: 30 30 30 बच्चों को सी दवांगे सारे बोलो वाहे गुरु सो मलार सिंह शुरू हो जाओ तुसी

जी वाहे प्रभु नाम च तेरे वाहे तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सत हुकुम तुम्हारा तख्त निवासी नानक साहिब भरपूर लीना तुम मेहरबान दास हम दीना नानक साहिब भरपूर लीना सुख टल गुर सेवी दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय सज्जन सच्चा पातशाह शिर शाह शाह जिस पास बैठे आ सो ही है सबना दा विसाहु वाहिगुरु जी सोरठ महला पंजवा परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना अणद करह नर नारी हर हर प्रभ कृपा धारी संत हो सुख होवा सब थाई पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रब रहे आ सबनी जाई रहाओ तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साचिव खाना दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साचिव खाना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जठन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिशिको हमारी इस सगल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह मत कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। चीटी ते कुंचल असूला सबर कृपा दृष्ट कर पूला। संतर दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पछाना कड़ कड़ के पढ़ पढ़ की जाना। जबद कर करा करतारा प्रजा तर तब दे हो पारा। जाबिया कर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तरसब हूँ। जीते बदन श्रेष्ठ सब तहरा आप अपनी बूझ उचारा।

नानक जनते उपाय के समाले सबना जिन करता करना किया चिंता भे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जवारी स्वस्थ तिस तिस।

लखुना प्रवान लख तपोपर तीर्थन सहजोग बेवान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ प्राण जन करता करना।

अंदर सचा ने हो लाया प्रीत में अपने तन मन हुए निहाल जा गुरु देखा सामने